0: और हम ही हवाएं चलाते हैं जो बादलों के पानी से भरी हुई होती हैं, और हम ही आसमान से मेह बरसाते हैं, और हम ही तुमको इसका पानी पिलाते हैं, और तुम तो इसका खजाना नहीं रखते।
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: और हम ही हयात बख्शते और हम ही मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस मालिक हैं।
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है।
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
0: और तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन उन सब को जमा करेगा, वो बड़ा दाना और खबरदार है।
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूं।
1: قال فخرج منها فإنك رجيم।
0: खुदा ने फरमाया, यहां से निकल जा, तू मर्दूद है।
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ।
0: और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी।
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون।
0: उसने कहा कि परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे।
1: قال فإنك من المنظرين।
0: फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है।
1: إلى يوم الوقت المعلوم।
0: वक्त मुकर्रर यानी कयामत के दिन तक।

0: उसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं।
1: इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून,
0: जो मुत्तकी हैं वो बागों और चश्मों में होंगे।
1: उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन,
0: उनसे कहा जाएगा कि इनमें सलामती और खातिर जमा से दाखिल हो जाओ।

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: और हमने उस शहर को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर खंगर की पत्थरियां बरसाई।
1: इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिल मुतवस्सिमीन,
0: बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है।
1: व इन्नहा लबिसबीलिन मुकीम,
0: और वो शहर अब तक सीधे रास्ते पर मौजूद है।
1: इन्न फी ज़ालिका लआयतल लिल मुमिनीन,
0: बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है।
1: व इन काना अस्हाबुल अयकति लज़ालिमीन,
0: और बन के रहने वाले यानी कौम शुएब के लोग भी गुनाहगार थे।
1: फंतकमना मिनहुम व इन्नहुमा लबइमामिन मुबीन,
0: तो हमने उनसे भी बदला लिया और ये दोनों शहर खुले रास्ते पर मौजूद हैं।
1: वलकद कذب اصحاب الحجر المرسلين,
0: और वादी हिजर के रहने वालों ने भी पैगंबरों की तकजीब की।
1: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين,
0: हमने उनको अपनी निशानियां दी और वो उनसे मुंह फेरते रहे।
1: वका

इसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और बेशुमार दरख्त उगाता है और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर करने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बड़ी निशानी है।

और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया, और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं।

और खजूर और अंगूर के मेवों से भी तुम पीने की चीजें तैयार करते हो कि उनसे शराब बनाते हो और उम्दा रिस्क खाते हो, जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए इन चीजों में कुदरत खुदा की निशानी है।

और खुदा ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया, और उसी ने चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए डेरे बनाए, जिनको तुम सुबुक देखकर सफर और हजर में काम में लाते हो, और उनकी ऊन और पशम और बालों से तुम असबाब और बरतने की चीजें बनाते हो जो मुद्दत तक काम देती।

फिर जिन लोगों ने ईज़ाएं उठाने के बाद तर्क वतन किया, फिर जिहाद किए और साबित कदम रहे, तुम्हारा परवरदिगार उनको बेशक इन आजमाइशों के बाद बख्शने वाला और उन पर रहमत करने वाला है।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आइए अब रास्ते के चंद वाकयात भी सुनते चलें। सही बुखारी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, हम लोग गार से निकलकर रात भर और दिन में दोपहर तक चलते रहे। जब ठीक दोपहर का वक्त हो गया, रास्ता खाली हो गया और कोई गुजरने वाला न रहा, तो हमें एक लंबी चट्टान दिखाई दी जिसके साए पर धूप नहीं आई थी। हम वहीं पर उतर पड़े। मैंने अपने हाथ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सोने के लिए एक जगह बराबर की और उस पर एक पोस्तीन बिछाकर गुजारिश की कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप सो जाएं और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के गिर्दो पेश की देखभाल किए लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सो गए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के गिर्दो पेश की देखभाल के लिए निकला। अचानक क्या देखता हूँ कि एक चरवाहा अपनी बकरियाँ लिए चट्टान की जानिब चला आ रहा है। वो भी उस चट्टान से वही चाहता था जो हमने चाहा था। मैंने उससे कहा, ऐ जवान, तुम किसके आदमी हो? उसने मक्का या मदीना के किसी आदमी का जिक्र किया। मैंने कहा, तुम्हारी बकरियों में कुछ दूध है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, वो दे सकते हो? उसने कहा, हाँ, और एक बकरी पकड़ी। मैंने कहा, जरा थन को मट्टी, बाल और तिनके वगैरह से साफ कर लो। फिर उसने एक काप में थोड़ा सा दूध दिया और मेरे पास एक चर्मी लोटा था जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पीने और वुजू करने के लिए रख लिया था। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आया, लेकिन गवारा ना हुआ कि आपको बेदार करूं। चुनाचे जब आप बेदार हुए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आया और दूध पर पानी उंडेला, यहाँ तक कि उसका निचला हिस्सा ठंडा हो गया। उसके बाद मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, पी लीजिए। आपने पिया, यहाँ तक कि मैं खुश हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी कूच का वक्त नहीं हुआ? मैंने कहा, क्यों नहीं। उसके बाद हम लोग चल पड़े। इस सफर में अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका ये था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के रदीफ रहा करते थे, यानी सवारी पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पीछे बैठा करते थे। चूँकि उन पर बढ़ापे के आसार नुमाया थे, इसलिए लोगों की तवज्जो उनकी तरफ जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर अभी जवानी के आसार गालिब थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कम जाती थी। उसका नतीजा ये था कि किसी आदमी से साबका पड़ता तो वो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछता कि ये आपके आगे कौन सा आदमी है? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसका बड़ा लतीफ जवाब देते, फरमाते, ये आदमी मुझे रास्ता बताता है। उससे समझने वाला समझता कि वो यही रास्ता मुराद ले रहा है, हालांकि वो खैर का रास्ता मुराद लेते थे। इसी सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का गुजर उम्मे माबद खुजाइया के खेमे से हुआ। ये एक नुमाया और तवाना खातून थी, हाथों में घुटने डाले खेमे के सहन में बैठी रहती और आने जाने वालों को खिलाती पिलाती रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि पास में कुछ है? बोली, बाखुदा हमारे पास कुछ होता तो आप लोगों की मेजबानी में तंगी ना होती, बकरियां भी दूर दराज हैं। ये कहत का जमाना था। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने देखा कि खैमे के गोशे में एक बकरी है। फरमाया, उम्मे माबद, ये कैसी बकरी है? बोली, इसे कमजोरी ने रेवड़ से पीछे छोड़ रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि इसमें कुछ दूध है। बोली, वो इससे कहीं ज्यादा कमजोर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाजत है कि इसे दो लूं? बोली, हाँ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, अगर तुम्हें इसमें से दूध दिखाई दे रहा है तो जरूर। इस गुफ्तगू के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उस बकरी के थन पर हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया और दुआ की। बकरी ने पांव फैला दिए, थन में भरपूर दूध उतर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उम्मे माबद रजी अल्लाह तआला अन्हा का एक बड़ा सा बर्तन लिया जो एक जमात को आसूदा कर सकता था और उसमें इतना दूध डाल दिया कि झाग ऊपर आ गया। फिर उम्मे माबद को पिलाया, वो पी कर शिकम शेर हो गई तो अपने साथियों को पिलाया, वो भी शिकम शेर हो गए तो खुद पिया। پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ ڈال دیا کہ برتن بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، جبکہ بکریاں دور دراز تھی اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولی با خدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ سامعین وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया FM 92.6। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कमाल, और आज हमारे साथ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज से मौजूद हैं सर मेहरान। सर कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अहमद आप कैसे हो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
3: प्लेजर इज़ माइन।
2: सर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको 3 साल हो गए हैं UCP में, और आप अब मौजूदा IR के कोऑर्डिनेटर सर्व कर रहे हैं।
3: जी, सम 3 years and few months। और हाँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से BSIR की कोऑर्डिनेशन को मैनेज कर रहा हूँ।
2: तो सर पिछले 3 साल से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और एज अ कोऑर्डिनेटर कैसा एक्सपीरियंस?
3: UCP have given me a wonderful opportunity. University of Central Punjab को जब मैंने ज्वाइन किया था, I came from University of Sialkot, वहाँ पर मैं लेक्चरशिप से कर रहा था। और UCP में it was fun, it always been, काफ़ी अच्छे colleagues, mentors मिले जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। The purpose of shifting was also कि मैं एक थोड़े कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में आना चाह रहा था, जहाँ पे मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ और मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हो। तो पिछले 3 साल से कॉन्टीन्यूसली इस ग्रोइंग सफ़र पर हैं, और यहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: सर फैकल्टी आर के हर प्रोग्राम में ना हमारा एक टॉपिक होता है, तो आज का भी हमारा टॉपिक क्या है, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की क्या है। तो सर इसका एक आम बंदे के जानने के लिए, जो कि स्टूडियो से बाहर बैठा सर रोड पे जा रहा है, गाड़ी में बैठा है, उसके जानने के लिए आप क्या बताएंगे कि फॉरेन पॉलिसी है क्या?
3: सो बेसिकली अहमद, हम फॉरेन पॉलिसी को अक्सर सुनते पढ़ते हैं अखबारों में और अपनी डेली लाइफ रूटीन में। फॉरेन पॉलिसी से जो एक मतलब लिया जाता है, विच इज़ दैट के फॉरेन पॉलिसी बेसिकली एक स्टेट की पॉलिसी है। जैसे हमारे पास हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, मल्टीपल पॉलिसीज होती हैं, वैसे ही हमारे पास फॉरेन पॉलिसी एक रियासत की पॉलिसी है। और इसमें स्टेट फॉर्मुलेट करने की कोशिश करती है अपने फॉरेन रिलेशंस को, अपने बैरुल अक्वामी तालुकात को। सो जब एक रियासत के कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो कि उसकी अपनी बाउंड्री के अंदर नहीं होते, जैसे हमारे कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट ऐसे होते हैं कि जो एक स्टेट की बाउंड्री तक कन्फाइन नहीं रहते, तो उस पैराडाइम को मैनेज करने के लिए, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए हम अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं कि अपनी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके हम अपने रिलेशन को किस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे। तो फॉरन पॉलिसी हमें उस मकसद के लिए काम आती है कि एक स्टेट की पॉलिसी जो कि उसके ब्रॉडर रिलेशन को हासिल करने के लिए काम आती है।
2: सर इसके भी 2 पहलू आ जाते हैं ना, कि इसकी तश्कील क्या है और तकमील क्या है।
3: अहमद, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि इस फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए उसकी तश्कील और उसकी तकमील, उसकी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन, हमें दोनों को समझना पड़ता है। और उसकी तश्कील हम करते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है ऑन द बेस ऑफ कौमी मफादात और कौमी मकासद के, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। कौमी मफादात या कौमी जो मकासद जिनकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं उनके जो कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सेम होंगे, इंक्लूडिंग स्टेट सोवरेनिटी, इकोनॉमिक इंटेग्रिटी, देन आइडेंटिटी ऑफ ए स्टेट। तो ये 3 बेसिक पैराडाइम्स के अंदर हम एक स्टेट के जो मकासद हैं उनको बयान कर सकते हैं। ऑल अराउंड द ग्लोब हर किसी को अपनी सोवरेनिटी को इंश्योर करना होता है, हर किसी को अपनी इकोनॉमिक इंटेग्रिटी को एक्सपैंड करना होता है, और हर किसी को अपनी आइडेंटिटी को थ्रू आउट द ग्लोब जो है वो मनवाना होता है। तो इन्हीं 3 इंटरेस्ट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक हर स्टेट्स अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने इन इंटरेस्ट को अचीव कर सके। उन ऑब्जेक्टिव्स क्यों माइंड में रखें हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मेशन करते हैं।
2: जी सर बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या है, और इन दोनों फैक्टर में से पाकिस्तान कहाँ पे लाई करता है?
3: सो अनदर गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं आपके पिछले क्वेश्चन का जवाब दूँ। आपने तकमील की भी बात की, मैंने आपको सिर्फ तश्कील का भी बोला था। तो अबाउट द तकमील फॉरेन पॉलिसी की, उसके लिए हमारे पास 2 टूल्स हैं, एक डिप्लोमेसी और किसी एक ज़माने में वॉर भी एक इम्पॉर्टेंट टूल था फॉरेन पॉलिसी का। अगर हम पुराने ज़माने में चले जाएं, जब हमारे पास सिविलाइज्ड स्टेट्स नहीं थे, बादशाहत का ज़माना था, तो किसी बादशाह को किसी नेबरिंग रियासत स्टेट किसी नेबरिंग रियासत से कुछ चाहिए होता था, तो वो उस पर इन्वेड करता था। कोहेरेंस वॉर इज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके इंटरेस्ट जो आपकी टेरिटरी के बाहर है उसको हासिल करने के लिए। हमारे पास मुगल एम्पायर की और हमारे पास बाकी सारी बहुत सारी रोमन एम्पायर्स की बहुत सारी एम्पायर्स की एग्जांपल्स हैं कि जब भी किसी को कोई इंटरेस्ट जो कि उनकी टेरिटरी से बाहर होते थे तो वो उसके लिए उसको इन्वेड करते थे, उस पर अटैक करते थे, तो वॉर। लेकिन सिंस वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू इंटरनेशनल लॉज की कोडिफिकेशन के बाद हम वॉर को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर मानते हैं, और लास्ट रिजॉर्ट भी अगर वो तब हो जब वो जस्ट वॉर हो। सो नाउ डिप्लोमेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरन पॉलिसी। फॉरन पॉलिसी की तकमील के लिए हमारे पास डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में आगे वी हैव अ फर्दर कैटेगरीज, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड द स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। नाउ मूविंग टू योर करंट क्वेश्चन विच वॉज के हारजा पॉलिसी का आज़ाद होना, इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी। गुड क्वेश्चन अहमद। अखबार में आपने भी अक्सर पढ़ा होगा मुल्कों की आज़ाद खारजा पॉलिसी, किस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, किसकी नहीं है, कभी इन इस तरह के अल्फाज से फैमिलियरिटी हुई होगी, राइट? तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से मुराद बेसिकली आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होती है, डिपेंड करता है आपकी पावर पे। द मोर पावरफुल यू आर द मोर इंडिपेंडेंट योर फॉरेन पॉलिसी इज़। तो क्या पावर एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है या रिलेटिव है, अहमद आपके ख्याल से क्या है? ऑल द इंटरव्यू मेरा है लेकिन मैं आपको भी साथ इंगेज करूँगा।
2: सर मेरे ख्याल में पावर एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है,
3: रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एक्चुअली एब्सोल्यूट आपकी बात ठीक है, हम उसको क्योंकि सोशल साइंसेस में कुछ भी पूरी तरह से डिनाई नहीं करते, लेकिन पावर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर आप ताकतवर हो तो आप किस से ताकतवर हो, आप किसी से ताकतवर हो या किसी से कमज़ोर हो, तो वो रिलेटिव में चली गई। जब आप किसी से ताकतवर हो या किसी से कमज़ोर हो तो वो एब्सोल्यूट ना रही, वो रिलेटिव में गई। तो सिंस पावर रिलेटिव है तो फॉरेन पॉलिसी का इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होना भी रिलेटिव है। वो ममालिक जिनसे पाकिस्तान पावरफुल है वहाँ पे उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और प्रोएक्टिव होगी, वो डिसीजन लेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ हैं जो जिनसे हम पावरफुल हैं, वहाँ पे नॉर्मली हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन सिमिलरली जहाँ पे बिगर स्टेट्स आ जाती हैं तो वहाँ पे आपकी फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट और रिएक्शनरी बेसिस पे चली जाती है, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो एक ग्लोबल ऑर्डर को मैनेज कर रही होती हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हो तो आपकी इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो इट्स अ मिक्स फिनोमेना, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट भी होती है एट अ सेम टाइम और डिपेंडेंट भी होती है।
2: सर पावर की भी आपने बात की, तो अगर हम कुछ डिकेड्स पीछे जाएं तो कुछ स्टेट्स का ये मानना होता था कि एक स्टेट का सर्वाइवल दूसरी स्टेट्स के हाथ में पे जुड़ा हुआ है, कुछ का अभी भी मानना है ये, तो क्या आपके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट ठीक था कि नहीं?
3: सो यू आर टॉकिंग अबाउट द रियलिज्म, और अगर अभी ये नहीं मानना तो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। रियलिज्म जो कि ये मानता है कि आपका बका जो है वो आपका सर्वाइवल जो है वो आपकी पावर मैक्सिमाइजेशन पे है, जितनी आप पावर गेन करेंगे उतने आप पावरफुल होंगे और उतने चांसेस आपके सर्वाइवल के ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके जवाब में कॉन्ट्राडिक्ट्री जो है वो हमारे पास लिबरलिज्म है। अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो उसमें हमारे पास हम बिलीव करते हैं कि कोऑपरेशन और आपस में को इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस से हम जो है इस चीज़ को अपने अपने स्टेट के रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं।
2: जी तो सामिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद मिलते हैं आपसे और सर से मजीद सवाल पूछेंगे, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: सिक्स बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक सामिन, हम वापस आ चुके हैं और सर से हम बात कर रहे थे रियलिज्म लिबरलिज्म के बारे में और पावर के बारे में। सर, हम यही बात कर रहे थे कि रियलिज्म और लिबरलिज्म का पावर के साथ क्या रिलेट।
2: हाँ, तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन था जिसके एड्रेस में हम रियलिज्म और लिबरलिज्म की तरफ बढ़े थे, वो सवाल आपका कुछ इस तरह से था कि पहले रियासतें यही मानती थीं कि उनका सर्वाइवल, उनका बका उस पर डिपेंड करता है कि जब उनके नेबरिंग में कोई बिगर पावर ना हो, राइट। तो रियलिज्म और लिबरलिज्म को इस पैराडाइम में हमने डिस्कस किया था एंड यू वर राइट अबाउट इट, लेकिन आज के टाइम पे भी हमारे पास ये दोनों थ्योरीज, ये दोनों अप्रोचेस जो हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी किसी पिछले ज़माने में थी। लेकिन सिंस इन दोनों अप्रोचेस ने एक अल्टरनेटिव सिस्टम दिया है कि आज भी हमारे पास बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करते होंगे कि आपका बका, आपका सर्वाइवल जो है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को खुद एम्पावर करो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, यस, अगर आपके नेबरिंग में अगर बिगर पावर्स हैं तो पाकिस्तान या कोई भी कंट्री उसके साथ को एग्जिस्टेंस में एक अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकती है, जो कि बेसिस है लिबरलिज्म की। और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास चाइना है कि सिंस पाकिस्तान और चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी में दे बिन ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड, और अभी जब से वो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हैं सिंस द सी पैक, तो हम वी कैन सी के दे बिन एस्टैब्लिशिंग अ गुड रिलेशन विद ईच अदर। तो एक बिगर पावर में और एक स्मॉलर पावर में एक लंबे अरसे से एक ज़बरदस्त रिलेशन जो establish हैं, वो हमारे पास एक आइडियल एग्जांपल है पाकिस्तान और चाइना की। तो इट डजंट ऑलवेज हैज टू बी कि आपकी नेबरिंग में आपसे वीकर स्टेट्स ही हो तो आपका सर्वाइवल इंश्योर हो सकता
1: है। जी सर, सर आपने पिछले सवाल में एक बात की थी कि फॉरेन पॉलिसी के एक टूल वॉर भी यूज होता था पहले।
2: हाँ जी,
1: है तो भी टूल है ये, लेकिन अब अगर करंट टाइम में हम देखें तो अगर दो स्टेट्स के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो वॉर के अलावा कौन सा टूल यूज कर सकती हैं?
2: इसके लिए हमारे पास पूरा एक कॉन्सेप्ट थ्योरी है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, ADR के नाम से जानते हैं, नेगोशिएशन, मीडिएशन, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और रेजोल्यूशन के पैराडाइम में ये चीज़ आती है। हमारे पास बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने गुड ऑफिसर्स प्रोवाइड करते हैं उन स्टेट्स को जहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसको रिजॉल्व करना, और इवन अगर किसी के बीच में जंग है भी तो उसका इख्तिताम जो है वो सीज फायर की शक्ल में होता है। तो एवरी वॉर एंड्स इन अ केस ऑफ द सीज फायर एंड देन सीज फायर लीड्स टूवर्ड्स द नेगोशिएशन एंड इन द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट। हम देखते हैं कि वॉर ऑन टेरर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो कि तकरीबन 21 साल चली लेकिन ख़त्म हुई एक सीज फायर के साथ और एक दोहा एग्रीमेंट के साथ। ग्लोबल जितनी भी वॉर्स हैं उसके बाद हमें अब नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं। तो यही हमारे पास अल्टरनेटिव टूल है कि इफ़ वी डोंट वांट टू गो फॉर अ वॉर तो विल गो फॉर द नेगोशिएशन, ताकि हम मिल बैठ के हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें। और अगर हम खुद नहीं कर सकते तो हमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑफिसर्स मिल जाते हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती हैं जो अपने ऑफिसर्स प्रोवाइड करती हैं रियासतों को ये काम करने के लिए, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक एग्जांपल।
1: सर, एज अ पाकिस्तानी कराची से लेके हैबर तक हर एक इंसान के एक लफ्ज़ तो आदमी सुना होगा सी पैक का। तो सर, एक आम बंदे के जानने के लिए सी पैक है क्या?
2: अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा सी पैक जपते रहे हैं पिछले कुछ सालों से। सी पैक एब्रीवेशन तो उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सो इकोनॉमिक कॉरिडोर से मतलब कि ये दोनों किसी इकोनॉमिक इनिशिएटिव पे साथ चल रहे हैं। सी पैक BRI जो कि चाइना का एक बड़ा आइडियल प्लान है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। BRI में हमारे पास 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं और CPEC उसका एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है।

0: नहीं है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करेगा, लेकिन सिक्योरिटी बेसिकली वो पहली फाउंडेशन थी जो कि एक स्टेट को रिक्वायर्ड थी अपने सर्वाइवल के लिए। जब रियासत का सर्वाइवल इंश्योर हो गया तो उसके बाद वो अपनी इकोनॉमिक इंटेग्रिटी के ऊपर काम करने की कोशिश करेगी, जो हमने पहले इनिशियली अपने एक किसी भी रियासत के कोर नेशनल इंटरेस्ट की बात की थी। तो 2015 से जब से हमने सीपैक साइन किया है, एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपने इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स पे फोकस कर रहा है, मतलब कि वो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अपने उनके साथ जो ताल्लुकात की बुनियाद है वो इकोनॉमिक बेस्ड है, ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रिक ताल्लुकात है, और सीपैक उसकी बुनियाद बनी। सीपैक की के बाद हमने ये अपने फॉरेन पॉलिसी में एक शेयर्ड इकोनॉमिक विजन लाया कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हम उनके साथ मिल के एक इकोनॉमिक विजन अचीव करना चाहते हैं। तो सीपैक इज़ अ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेम्प्रेरी।
1: सर, पाकिस्तान ने चाइना के साथ तो सी पैक साइन किया हुआ है, चाइना के अलावा पाकिस्तान ने और किन कंट्रीज़ के साथ अपनी इकोनॉमिक इनिशिएटिव के लिहाज से साइन किए हुए ट्रीटीज वगैरह?
0: हाँ, तो हमारे बेसिकली प्लान जो है सी पैक का पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो ये है कि जब सी पैक इस्टेब्लिश हो जाता है कम्प्लीट, जो कि अब 2035 तक सी पैक की डेट है कि वो कम्प्लीट होगा, सी पैक की कम्प्लीशन पे पाकिस्तान ये रूट सेल करेगा टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ताकि वो इस रूट को यूज़ करके अपनी ट्रेड को एनहेंस कर सकें। अगर आप स्पेसिफिकली एग्रीमेंट्स की बात करें तो सी पैक से पहले से पाकिस्तान के कुछ एग्रीमेंट्स हैं, जैसे टापी, कासा, IPI जो कि ट्रांसलेट हो गया इनटू द IP लेटर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो पाकिस्तान के ये कुछ एग्रीमेंट्स जो कि उसने लेट 1990s में किए थे वो हमें हेल्प करते हैं जो इसका शेयर्ड इकोनॉमिक विजन है उसको अचीव करने में अलॉन्ग विद द सी पैक। तो सी पैक के बाद पाकिस्तान उन सब के ऊपर उसको रिवाइव करने पे और फोकस करने पे काम कर रहा है। इसी रेफरेंस में एक उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर है जो कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा विद द सी पैक का जो रेलवे कॉरिडोर है, ताकि सेंट्रल एशिया से गवादर तक ट्रेड रूट इस्टेब्लिश हो सके। तो देर आर सच न्यूमरस एग्रीमेंट्स जो कि पाकिस्तान अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ साइन कर चुका हुआ।
1: जी सर, हम एक छोटे से वक्फे पे जाते हैं, उसके बाद हम वापस आके मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो सामीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम मिलते हैं आपसे। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राबता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर एसएमएस करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या एसएमएस के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। बीटी

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
1: UCP No. 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए,
3: सुनते रहिए।
4: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
5: In sadaye Lahore ast, in sadaye UCP ast. Lotfan goosh bedahid FM 92.6 jahane UCP.

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा।
1: बाकी?
0: हाँ।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
3: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

इस सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरोड़ताल सुरोड़ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मट्टी का है बाबा तू, तेरी किस्मत एक सफर।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, सोचूं तो एक शख्स ना अपना दिखाई दे।

0: भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा।
1: बाकी?
0: हाँ।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया
2: Fasten your seatbelt.

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड टू 90

0: नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।